0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
6: सबका राजा आर्द्र मसाला।
7: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
6: सबका राजा प्योर मसाला।
7: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: मैंने थोड़ा क्रोध दिखाया कि सर देखिए औकात औकात की बात ना करिए। उतनी देर में इनके जो पहले के पीएस थे और बाकी लोग थे और कुछ लड़कों को मैं नहीं पहचानती, काली शर्ट वाला, लाल शर्ट वाला, जूता चप्पल थप्पड़ सब चलाने लगे महिलाओं पे।
1: बड़ी पार्टी होती है, थोड़ी बहुत रहती है
2: तो
1: नहीं नहीं देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे रहे वो बहुत ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके योगदान को किसी भी तरह से ना भुलाया जा सकता, उनके योगदान को ना हम लोग कमतर आ।
3: जिसने भी जूता उठाया है उस पर एक्शन हो जाए, इससे पार्टी की छवि धूमिल होती है और ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए जिस दल में हो उस दल में जो है कहते हैं जिस थाली में खाओ उसी में छेद करें, तो गलत बात है। और विवाद हो सकता है, अपनी बात रखें मंच पर, न कि इस तरह से लड़ने लगे कि जूता निकाल के मारने लगे, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी भर्त्सना।
4: Slipping a short break, when we return, NDTV's editor-in-chief Rahul Kawal in an exclusive conversation with Google DeepMind's chief AI readiness officer. More on that in moments from now.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Priyanka continue to be silent, says the BJP, and they've hit the streets in protest. Let's go straight across now to NDTV's Aishwarya, who's right there where the protest is happening. Aishwarya, go ahead, tell us what you're seeing.
1: Well, that's right, a big protest by the Bharatiya Janata Party against Congress MP and JNU Professor Agomcha Bimol over here in the national capital. And it is the Bharatiya Janata Party who's demanding against the Congress MP, seeking action by the Congress Party. Why Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi completely silent? Over here you can see these placards that Bharatiya Janata Party workers, the MPs of BJP who have gathered over here, holding the MPs, including Bansuri Swaraj and others, clearly over here, demanding an action by Rahul Gandhi against the Congress MP. Ma'am, इतना बड़ा आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, आज आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं. राहुल गांधी ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है कांग्रेस एमपी के खिलाफ. आप लोगों की क्या मांग है?
2: इस यही मांग है कि आप पूरे देश में युवाओं का कार्यक्रम करें. सब लोग कह रहे हैं कि युवा आपके साथ है, और आज एक इतनी महिलाओं के खिलाफ आपके सांसद ने अत्याचार किया है, यौन शोषण किया है, इतना गंभीर मामला है. आप महिला अधिकार की बात करते हैं, उसकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए, पार्टी से निकालना चाहिए, पर आपके मुँह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा. गलत है ना, ये दोहरापन कैसे चलेगा?
1: FIR आज दर्ज हो गई है उनके खिलाफ. FIR दर्ज हो गई है आज उनके खिलाफ.
2: क्या भाई, मैं भी किसी पार्टी की सांसद हूँ, मैं भी किसी पार्टी में हूँ. एक एक्शन तो पार्टी का भी होता है ना भाई. आप क्या कर रहे हो अपनी पार्टी के लिए, पार्टी के बिहाफ से क्या कर रहे हो? वो तो जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, कानूनी प्रक्रिया. आपका अपना क्या कदम है?
1: So the law will take its own course, but the Congress party should also speak up against the Congress MP. There you can see the Congress MPs over here protesting against the Congress, the Bharatiya Janata Party workers protesting. BJP MPs have joined in as well. Ma'am, FIR दर्ज हो गई है आज इस सांसद के खिलाफ. क्या और एक्शन की डिमांड करते हैं?
3: एक्शन होना चाहिए, और उनको तो लज्जा नहीं है, लेकिन कांग्रेस को मैं आह्वान करना चाहूंगी कि जिस पेट्रियॉर्की की वो बात करते हैं, अपने ही सांसद ने जो 11 लड़कियों को तकलीफ दी है, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाई है, उनको अब्यूज किया है सेक्सुअली, उनको बर्खास्त करना चाहिए. उनको पद जो है, उनका सांसद का पद जो है वो बर्खास्त करना चाहिए, ये हमारी मांग है. अब ये अन्याय हिंदुस्तान की महिला नहीं सहेगी. कांग्रेस के खिलाफ आज आप देख रहे हैं कि हर महिला आज यहाँ रास्ते पर आ गई है.
1: So the placards clearly stating 11 बेटियों की एक पुकार, न्याय मिले अब की बार. एंड इट इज बीजेपी वर्कर्स हैव गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स ओवर एज फार एज द एंटायर प्रोटेस्ट इज कंसर्न. देयर यू कैन सी सेवरल भारतीय जनता पार्टी एंड एनडीए एमपीज हैव गैदर्ड हियर ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रक व्हिच हैव दिस प्लेकार्ड्स.
4: और हमारी MLA और हमारे जनप्रतिनिधि वो बहने रहेंगी.
1: क्या राहुल गांधी से मांग करते हैं? स्मैश द पैट्रियार्की वो बोलते हैं, लेकिन अभी तक कोई कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया. हालांकि कांग्रेस एमपी ने बोला है कि इन्वेस्टिगेट होने दीजिए, उन्होंने सारे क्लेम्स को डिसमिस जरूर किया है.
5: कांग्रेस की हमेशा से महिला विरोधी मानसिकता रही है. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सिर्फ महिला सम्मान की बातें करते रहते हैं, और कांग्रेस ने संसद में जो महिला आरक्षण बिल का विरोध करके महिला विरोधी मानसिकता उसने साबित की है. और एक नहीं, दो नहीं, 11 छात्रा ने शिकायत की है, और कांग्रेस के कोई भी नेता ने कहने के कोई शब्द नहीं है। और आज देश की बेटियां पूछ रही है, आज देश की बेटियां जवाब देने के लिए कांग्रेस के पूछ रही है।
1: कांग्रेस पार्टी इज क्लियरली साइलेंट ओवर दिस एंटायर भारतीय जनता पार्टी एम पी एज वेल हू हैज कम ओवर हियर एंड शी विल बी लीडिंग द एंटायर प्रोटेस्ट दैट नाउ द पार्टी हैव स्टार्टेड सेवरल अदर एम पीज ऑल्सो एफ आई आर जरूर हो गई है। आगे क्या मांग है आप लोगों के, बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर?
6: देखिए, कांग्रेस को अपने ऐसे सांसद को निलंबित करना चाहिए पार्टी से जो बेटियों के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हैं। और अब बीच में पुणे यूनिवर्सिटी में पुणे में गए और वहाँ पे वो महिलाओं के लिए जो बातें कह रहे थे तो हकीकत में करके दिखाए। उनके यहाँ तीन तीन बेटियों हैं जो नेतृत्व की सत्ता में, वो बेटियाँ कहाँ हैं आज? जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली बेटी क्या अपने परिवार और अपने सत्ता के लिए ही लड़ना जानती कि आम महिलाओं के साथ अन्याय होने पर उनके लिए भी लड़ना जानती? आज चुप क्यों है प्रियंका वाड्रा? मैं पूछना चाहती हूँ, ये भारत की बेटियाँ पूछ रही है, भारत की बहने पूछ रही है। इसको लेके आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के साथ आज पूरे जो सांसद लोकसभा और राज्यसभा के सभी लोग आज दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी जिसका दोहरा चरित्र है उससे ऐसे सांसद को निलंबित करने की मांग करते हैं।
4: आप चुप क्यों हैं?
1: So to you know dismiss the Congress MP, it is these MPs from the Bharatiya Janata Party and NDA who have gathered in large numbers over here on the streets of national capital now demanding the Congress party to take action against Agomcha Bimol, the MP from Manipur, and also the JNU professor, and they will be also marching from this very place towards Indira Bhavan, which is the Congress headquarters. Ma'am, an FIR has been filed against this MP this morning. What action do you see further as far as the Congress MP is concerned?
7: Well, I'm sure that the law will take its course. It's a very unfortunate thing that has happened. We didn't expect an honorable MP from the Congress party to have such allegation. So I think we are all supporting that he should be removed, and that's what we are here for. Thank you.
1: Ma'am, agar Congress koi action nahi leti hai to aage इसको किस तरीके से और आगे बढ़ाएंगे?
8: हम भारत की नारी हैं, हम इस तरह से अपने बच्चों का अपमान नहीं सहेंगे। कांग्रेस को अपना चेहरे का नकाब उतारना होगा, अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, सांसद को बर्खास्त करने के साथ साथ कारण बताना होगा।
4: गैर जिम्मेवार इंसान है।
1: सो दे डिमांडिंग you know the Congress MP that Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi always speaks about the patriarchy to be smashed, and Priyanka Gandhi says ladki hu lad sakti hu, but they haven't spoken a single word against you know this Congress MP, and they haven't taken any such decision. So yes, over here the Bharatiya Janata Party in large numbers have gathered. These are MPs from the NDA bloc and they are protesting, and they will be marching from here towards the Congress headquarters is what we have been told. Altogether there's been no permission that has been given by the Delhi police for the march, looking at the other protests that are simultaneously happening here in the national capital as well. But certainly they will be marching, and they want action to be taken by the Congress. Something that Gandhi should speak in terms of what had been the allegation. Bharatiya Janata Party MPs as well, a lot of MPs and the Bharatiya Janata Party workers have gathered. We will also speak and try to speak to Basuri Swaraj and other Congress MPs, but they are continuously protesting. These MPs holding cards stating that it is 11 daughters who have suffered. This is a repeated allegation that has leveled against the Congress MP and there have been several cases that have been registered as well this morning. Remember, it is the Bharatiya Janata Party who have tried to increase the momentum and seeking an action. The Delhi police have clearly taken its own, taking this matter to the street. There you can see MPs.

0: and his sister. They are lying down on the road, they are creating a ruckus, but they are not removing that man from the party and not taking any action. You cannot have two standards when it comes to women empowerment. And I am a living example of what how women are treated in the Congress party. So what is happening is not something new. But Rahul Gandhi has to speak on this and has to take action. Let's see. It's a challenge to him. Press conference karo and throw that man out.
1: The Congress party is saying that all of this is just an attempt to divert the matter from what they think is the most pressing issue in the country, which is the SIR. And the BJP here holding a press conference of holding a protest by its female MPs, questioning the silence of the Gandhi specifically when it comes to the charges against Professor Bimal Akhoja.
2: Vasudha continues to be with me as this protest outside the Congress office picks up pace. Aishwarya, Rahul Gandhi will be holding a press conference in a short while from now. I'm sure questions will be asked about this. But is there a schedule of which leaders will be coming there for this protest? How long it's going to last, etc.?
3: Oh, well, the sources have revealed to us in the Congress party that while there will be a press conference, Rahul Gandhi will be showing some photographs of Delhi police, indulge in an act of violence against the female students. Perhaps that's what the Bharatiya Janata Party MPs are saying, that it is their own MP which have sexually harassed and assaulted students over there. There are other MPs who have been wearing these black saris, and they are also holding black flags. Smriti Irani and other top leaders from the Bharatiya Janata Party will be gathering. All the female MPs from the NDA bloc have been called in this protest that will soon start, where we are here at the Andhra Education Society towards the Indira Bhavan. Certainly the questions that will be raised, that why Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi are silent over this issue, ma'am. Congress ke neta Rahul Gandhi ek press conference karne wale hain, aur usme Delhi police dwara ye bataya bhi jayega ki kis tarike se jo protesters the, female students thi, unko unke upar maarpeet ki gayi. Bada press conference karenge iske upar. Aap log khud sawal utha rahe Rahul Gandhi ke upar ki Congress ke sansad unhe sansad ne is tarike se jo sexual harassment ka case unke upar hai uske upar wo puri tarike se chupchap hai. Aap log aage is mudde ko kis tarike se
4: देखिए, राहुल गांधी जी दोहरी राजनीति करते हैं. कभी वो मनुस्मृति की बात करते हैं और कभी पितृसत्ता हटाने की बात करते हैं. लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के जो सांसद हैं और जो प्रोफेसर थे उनको हटाया गया, लेकिन उनको अपनी पार्टी से क्यों नहीं उनको हटा रहे हैं और ना ही सोशल मीडिया पर उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं. ये दोहरी राजनीति महिलाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि देश की जो महिला शक्ति है वो जागृत है, उसको सब नॉलेज है कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं. अपनी पट नहीं चलेगी यहाँ पर. राजनीति में सब कुछ इस तरह से नहीं चलता है कि आप अपनी चलाए किसी भी बेबुनियादी मुद्दों पर बात करें. जब आप स्टेज पर आकर महिला सशक्तिकरण की बात करते हो तो आपकी पार्टी में इस तरह के पहले भी महिला कांड बहुत सारे हुए हैं, तो उन पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी? तो ये बहुत ही निंदनीय है.
3: आपको भी लगता है डबल स्टैंडर्ड है राहुल गांधी के? एक तरफ महिलाओं के लिए बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, और अपने एमपी के लिए कुछ?
5: देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी और इनकी कांग्रेस पार्टी का हमेशा से द्वारा चरित्र, एक तरफ ये महिलाओं की बात करते और एक तरफ जेएनयू में उन 11 बेटियों के साथ अत्याचार दुराचार हुआ और उन्हीं के सांसद जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते, मैं राहुल गांधी से मांगती हूँ कि इस्तीफा अपने सांसद को बर्खास्त करिए. ऐसे सांसदों के क्या करें जो जरूरत है, जो देश की बेटियों की सुरक्षा ना कर सके, देश की बेटियों के साथ खड़ा ना रह सके. ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा से द्वारा चरित्र रहा.
3: मैम, आपको भी लगता है डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये? एक तरफ राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें पुलिस द्वारा बल प्रयोग जो फीमेल स्टूडेंट्स के खिलाफ हुआ है उसको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस एमपी के खिलाफ उन्होंने?
6: देखिए, राहुल गांधी जी इस देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. उनको आज भारत की महिलाएं उनसे जानना चाहती हैं कि जेएनयू की जो 11 बच्चियों ने डॉक्टर बिमोल पे सेक्सुअल हेरेसमेंट का जो आरोप लगाया है, जो स्पष्ट हो चुका है, जो साबित हो चुका है, वो डॉक्टर बिमोल को अपनी पार्टी से कब निकाल रहे हैं और महिलाओं के सम्मान में कब वो खड़े होंगे, वो आज देश की हर महिला उनसे ये जानना चाह रही है।
3: आगे क्या प्लान है अगर कांग्रेस कोई एक्शन नहीं लेती है?

0: अध्यक्ष जान चुका है, इस देश की महिलाएं जान चुकी है कि राहुल जी और उनकी पार्टी महिलाओं के विरोध में है।
1: Of the Congress party over here, Kamalji Chirawat, ma'am, double standards हैं ये आपको लगता है राहुल गांधी के? एक तरफ press conference करके पुलिस ने जो बल प्रयोग किया उसके बारे में बात करने वाले हैं अपने MP के खिलाफ।
2: कांग्रेस के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 11 छात्राओं की कंप्लेंट की वेरिफिकेशन और कंप्लेंट ठीक पाई गई, इसलिए यूनिवर्सिटी से उन्हें चेक किया गया। लेकिन राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उनकी बहन जो बेटियों की बात करती थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इन 11 लड़कियों के लिए उनकी बहन का क्या स्टैंड है प्रियंका जी को बताना चाहिए। राहुल गांधी जी बेशक चुनाव आयोग के खिलाफ करें, उनका अधिकार है, लेकिन ये उनका फर्ज है कि वो जवाब दे कि इन बेटियों के साथ जो शोषण हुआ है उसके ऊपर राहुल गांधी जी का क्या स्टैंड है, और उन्हें अपने इस सांसद को पार्टी से बाहर करने की मांग हम करते हैं।
1: More and more senior Bharatiya Janata Party leaders now also joining in. It's a huge gathering now which is taking place at the DDO mark, and they all will be marching towards the Congress headquarters, although there has been huge security which has been deployed. But Bharatiya Janata Party in one word saying that it's a double standard of Rahul and Priyanka of not speaking against the Congress MP while they should take certain action against the Congress MP, and until and unless that doesn't happen, okay, they will amplify their voices.
3: Okay, we'll wait for that. Vasudha, quickly coming to you, you know, you've got voices around you, but I also want to ask a specific question. Why aren't Rahul and Priyanka addressing this issue? It's a difficult one to avoid. This is literally a Congress MP. This is JNU. They've literally, you know, taken up the issue of crimes against women in Delhi recently as a big moral issue. It looks conspicuous, their silence at this point of time. And that's what the BJP is capitalizing on.
4: Ashif, I couldn't hear your full question, but I heard the word silence, and I think that's a moot point of what you're trying to ask. And that's exactly what we feel, because this is an issue that Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi should be speaking about. They have been, you know, showcasing themselves as people who value the women voter, women leader, the female leader. So for them to not talk about this, I think the BJP is also trying to optimize on this issue and amplify this issue to the hilt, because it's not just one person who has complained against Professor Bimola Koichand. There are 11 people. There's a whole internal committee report that has come out that has talked about various ways in which he used to have his women students, female students as the guide. And remember, there's a power asymmetry there. He was a PhD guide asking them to watch completely, you know, inappropriate movies, advances that are completely, you know, that should not be part of any, you know, educational realm. So I think what the BJP is trying to do here is also point to a very potent issue that they feel will strike a chord with people. These are people who have come from different parts of the city. Ma'am, ye protest se aap kya umeed rakhti hain?
5: ये प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ही प्रभावी है और पूरे देश भर में इस तरह प्रोटेस्ट चल रहा है। आज विशेष रूप से दिल्ली में कांग्रेस के मुकाबले पर ये हो रहा है और पूरे हमारी प्रमुख बहनें वो भी यहाँ पे आई है कि महिलाओं का जो अत्याचार है जो राहुल गांधी ने की के द्वारा, मतलब उनके जो MP है उनके लिए उनको बर्खास्त किया तब किया जाए। बिल्कुल
4: कह रही है कि आप लोग ना इशू भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, SIR पे जब प्रोटेस्ट हो रहा है तब आप इस पे कर रही हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है कि आप इशू भटकाने की कोशिश कर रहे हैं?
5: नहीं, इशू भटकाने का क्या, उनके पास तो काम ही कोई नहीं है। हमारा तो महिलाओं को लेकर के काम हमारा है, महिलाओं को बढ़ाने का काम हमारा है।
4: सो दैट्स व्हाट यू नो अ लॉट ऑफ वुमेन हैव कम हियर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, सम ऑफ देम फ्रॉम यूपी एंड हरियाणा एज वेल, शिव, एंड द मोर पॉइंट हियर इज टू ऑल्सो मे बी गिव अ काउंटर टू द कांग्रेस एज इट हैज बीन प्रोटेस्टिंग एवरी डे ऑन द SIR इशू। द बीजेपी प्रोबेबली वॉन्ट्स टू सेंड आउट अ मैसेज दैट व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स राइट्स, वुमेन्स एम्पावरमेंट, दे सीम बेटर प्लेस, बिकॉज द साइलेंस ऑफ द गांधी, साइलेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेसर कोईचाम is in some ways very disturbing, and probably the Congress party should also maybe issue a statement or suspend the MP, you know, following the action by the university against it.
3: And this is an issue, I take your point, Vasudha, because this is an issue which the more the Congress stays silent, the more immoral it looks. And the reason for that is Rahul and Priyanka have themselves become, you know,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: जानते हैं आपकी क्या हालत है, हम जानते हैं कि आप रात को सो नहीं पाते हो, और आप घबराइए मत, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप, मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, आप बचोगे नहीं एज ए इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हो रहा है, ये लाखों लोग जो हैं, ये आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, और ये रुकेंगे नहीं। रुकेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपके सामने भी लोग हैं, और उन तक पहुंचने के लिए हमें आपको हटाना है। दिन हमने कहा कि देखिए, हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। विपक्ष के सारे नेता बिना हिंसा, बिना नफरत, मोहब्बत के साथ एक साथ वहां गए, हमें रोका गया, उठा के पुलिस बसेस में डाल दिया, धक्का मुक्की हुई। हमें कहा गया कि देखिए, आप यहां प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। फिर हमने कहा ठीक है, अगर यहां नहीं कर सकते तो बताइए कहां करें। पुलिस ऑफिसर कहता है आप अपने घर में कीजिए। मैंने कहा देखिए, मैं घर में तो नहीं करूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड आई रोट टू द सीजीआई एक्सप्रेसिंग आर ग्रेव कंसर्न अबाउट द मर्डर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन फेयरनेस। ऑनरेबल सीजीआई हैज रिस्पॉन्डेड एंड इंस्ट्रक्टेड अस टू फाइल अ पिटीशन। तो ये कंफ्यूजन है जो शायद सरकार को समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। कहा गया है कि सीजीआई सेड ही विल नॉट मीट ऑपोजिशन लीडर्स। That is not relevant. This is relevant. Honorable CJI has responded and instructed us to file a petition. कि जो आपके issues हैं वो आप Supreme Court में file कीजिए, legal process शुरू कीजिए। आज India Block leaders और मैं Supreme Court जाएंगे, एक साथ हम ये petition file करेंगे।
1: Moving on, the Cockroach Janata Party seeks a new date for a peaceful protest. The Cockroach Janata Party leaders Saurabh Das and Ashutosh Ranka reached the Parliament Street Police Station and have sought a date for holding a peaceful protest at Jantar Mantar. A row has erupted after CJP founder Dipke has raised questions over his treatment in custody, including his access to a phone and his request to speak to family members after his grandmother's death. The Delhi police has released a video of Dipke's detention, countering CJP's allegations. The police says Dipke was offered assistance, including help with flights and phone calls, after officers informed him of his grandmother's demise. Dipke has disputed the police version, alleging that he was denied access to his phone and a call with his lawyer, and he also claims that the video has been edited.
2: अभी इंफॉर्मेशन सर, ऐसा है कि आपने अपना अगर माइंड मेकअप किया हो, अगर आपको भी अगर आपके ग्रैंड मदर के उसमें अगर जाना है, बस जो भी ट्रांसपोर्ट, मतलब बस, फ्लाइट वगैरह जो भी है, हम आपको अरेंज करवा देंगे। आप यहीं रुकेंगे?
3: I'll stay.
2: जाना नहीं चाहते?
3: I'll stay.
2: Okay. और सेकंड थिंग ये है कि अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर से बात करना चाहते हैं, तो वो भी, हम एक व्यक्ति से जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, तो हम आपको अपने ऑफिशियल मेंबर से बात करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम नंबर नोट करके दे दीजिए। फादर का तो नंबर
3: फादर से बात नहीं कर
2: पाऊंगा। ठीक है, क्या कर सकते?
3: मैं नहीं निकलूंगा यहाँ से।
4: दिल्ली पुलिस अगर हिम्मत है तो पूरा वीडियो रिलीज करे, जहां पर मैं बार बार बोल रहा था मुझे मेरे कजन से बात करने दीजिए, मुझे दो मिनट के लिए मेरा फोन दे दीजिए, और मैं बार बार ये भी कह रहा था कि मुझे मेरे लॉयर से बात करने दीजिए। समझ में आएगा जनता को कि किस तरीके से आपने मुझे मेरे बेसिक राइट्स डिनाई करे, किसी को भी अरेस्ट

0: के बाद, डिटेन करने के बाद उनके लॉयर के लॉयर को कॉल करना करने देना एक उनका लीगल राइट है। दिल्ली पुलिस ने वो तक भी नहीं करने दिया, और अभी मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे कि देखो अभिजीत की दादी की डेथ हो गई थी, तो हमने अभिजीत को बोला कि दादी की डेथ हो गई है, हम नहीं चाहते तुम यहाँ रुको। तो रात के 3:30 बजे अरेस्ट पेपर लेकर क्यों आए मेरे पास? रात के 3:30 बजे मुझे उठाकर कहते कि ये तुम्हारे अरेस्ट पेपर है, तुम लंबा जेल में जाने वाले हो, जल्दी जल्दी से जल्दी इसको साइन करो। मैंने बोला जब तक मेरे लॉयर आते नहीं, जब तक आप मुझे मेरे लॉयर से बात नहीं करने देते, मैं किसी भी पेपर पर साइन नहीं करूंगा। तो कहते ऐसे नहीं चलेगा, आपको साइन तो करना पड़ेगा, अपने माँ बाप को फोन लगाओ, बता दो उन्हें कॉल करके कि तुम अब लंबा जेल में जा रहे हो। मैंने बोला मैं 3:30 बजे अपने माँ बाप को क्यों कॉल लगाऊ? आपने दिन भर मुझे कहा गिरफ्तार रखा है, कहा पकड़ कर रखा है, किस पुलिस स्टेशन में रखा है, देश के किस हिस्से में रखा है, ना मुझे पता है, ना मेरे माँ बाप को बताया, ना मेरे लॉयर्स को बताया।
1: पीसफुल प्रोटेस्ट अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, सब लोग कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो लोग करेंगे पीसफुल प्रोटेस्ट। हम लोग पुलिस का हमेशा कंप्लेन रहता है 10 दिन पहले आइए 10 दिन पहले आइए। हम अब बोल रहे हैं कि आपके पास चॉइस है, आपको जो
2: डेट मांगी है वो कौन सी मांगी है?
1: हमने उन पे छोड़ा है कि आप डेट एंड टाइम बताइए इस बार हमें।
2: आप लोगों की तरफ से दी गई है?
1: कुछ नहीं, हम लोग पूरा उन पे छोड़ रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वो लंबित करके रखे मैटर को, 24 घंटे का अल्टीमेटम देंगे। अभी दिल्ली पुलिस से डेट मांगने जा रहे हैं कि आप बताइए जंतर मंतर पर कब प्रदर्शन कर सकते हैं।
3: माइक थोड़ी चेक कर लो यार,
1: पुलिस हमें डेट बताएगी,
3: माइक थोड़ी
1: नहीं बताएगी तो 24 घंटे में हम एक और बोल देंगे। एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पे प्रोटेस्ट करने के लिए क्या दिक्कत होनी चाहिए? वहां तो आपको करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस जिस तरह से पूरी दिल्ली को ठप कर रही है, कितने सारे लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, दुकानें बंद हो रही हैं, फेस्टिवल का सीजन है, तो आप एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर जाके प्रोटेस्ट करनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? ये 5 दिन 7 दिन 10 दिन कब कर सकते हैं प्रदर्शन, देखते हैं, बात करते हैं जंतर मंतर की, कब बात होती है।
4: Our focus will be on those parallel protests that will be taking place today. You have the BJP already holding a protest with women representatives from the party taking on Rahul Gandhi. Rahul Gandhi says at 3 o'clock he will be heading to the Supreme Court to file that petition. Moving on now, Prime Minister Narendra Modi's Chennai event has triggered a political row over protocol, with Tamil Nadu BJP chief Nayanar Nagendran seated on the stage alongside the Prime Minister. The TVK and Congress have questioned Nagendran's presence on the stage, asking under what protocol he was accommodated at a government event. Tamil Nadu Minister Nirmal Kumar said government functionaries must adhere to protocol, while Congress leader Manikam Tagore pointed out that Nagendran is neither an MLA nor an MP. The row comes amid the high-profile stage appearance of Prime Minister Modi and Tamil Nadu Chief Minister Vijay.
5: இனிமேல் இந்த ஒன்றிய அரசு நிகழ்ச்சிகளில் அவங்களுடைய கட்சி கட்சி கட்சியை சார்ந்தவர்களை உள்ளே வந்து அமர வைப்பது எந்த புரோட்டோகால்னு தெரியல. இது ஒரு தவறான முன்னுதாரணம், இந்த முன்னுதாரணத்தை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். இது வந்து தவறான முன்னுதாரணம், புரோட்டோகால் இல்லாமல் யாரும் வந்து அரசு நிகழ்ச்சிகளை பங்கேற்கக்கூடாது. எம்எல்ஏவும் இல்லை எம்பியும் இல்லை, எந்த புரோட்டோகால் அவர் அமர்ந்தாருன்னு தெரியல. இது வந்து கண்டிப்பாக ஒன்றிய அரசு தவிர்க்க வேண்டும். அவங்க கட்சிக்கார நபர்களை கட்சிக்காரங்களை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு அரசு நிகழ்ச்சிகளை பயன்படுத்தக்கூடாது.
6: எந்த பொறுப்புகளையுமே இல்லாத, எம்எல்ஏ கூட இல்லாத, எம்பியாக கூட இல்லாத நாகேந்திரன் அவர்கள் எப்படி மேடையில் உட்காந்துருக்காரு, எந்த புரோட்டோக்கால் எனக்கு தெரியலை. பிரதமர் அவர்களோட மேடையில் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் எந்த புரோட்டோக்கால் மூலமாக அமர வைக்கப்பட்டார் என்பது மிகவும் வியப்பாக இருக்கிறது. இது மத்திய அரசினுடைய ப்ரோக்ராமு.
4: Moving on to a disturbing story from the state of Keralam, where 3 young lives have been lost, a speeding Mini Cooper and remarks that could have sparked and have rather sparked outrage. In Keralam, a 19-year-old driver is accused of ramming his car into a scooter. You can see that speeding car there. That's the man who has been accused. He rams into a scooter where there were 3 people riding on that scooter, killing Devika, Gopika and Injaz, all in their early 20s. The accused allegedly drove under the influence of alcohol, and then came a remark that has been highly controversial, triggering so many people. After the crash, he said, and I quote him here, "My father will take care of it." Now, the Kerala government has ordered strict action against bars accused of serving alcohol to this underage teen. 3 lives have been lost. The question remains, who served him alcohol, who will be held accountable, and how can this boy assume that the law will compromise before his father? Slipping to short break. After the break, we tell you more about that attack and the surveillance footage that has now emerged from inside the airport at Riyadh.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्द्र मसाला।
4: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: the Congress take action against the professor and suspend him from the party. An FIR has been registered against Koyejem, who's connected with the allegations. He's been booked under charges of sexual harassment and also been terminated by Jawaharlal Nehru University after an internal inquiry found him guilty of sexual harassment of several students.
1: Leader Bansuri Swaraj, who is going to be part of the protest as well, joining us live here on NDTV. Ms. Swaraj, you're live on NDTV right now. What is your message right now from inside the protests?
2: Actually asked Rahul Gandhi about his deafening silence. क्या छात्रों की गूंज केवल एक राजनीतिक जुमला है क्या? इन 11 छात्राओं की गूंज आपके कानों तक नहीं पहुंची क्या? या छात्रों की गूंज केवल एक आवरण है आपकी चीप कॉमेडी के लिए? विमल अकोजे इज अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी. आई वांट टू आस्क राहुल गांधी जी, व्हाई नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय हिम और द कांग्रेस पार्टी? वो मौन क्यों साधे हुए हैं?
1: The Congress party is planning to march towards the Supreme Court today on a separate issue. Rahul Gandhi is going to be holding a press conference as well. What is the plan of your protest? Where are you taking it? Bansuri, if you can hear me, I'm asking you, what is the plan of the protest today? Where are you taking this protest?
2: आज के प्रोटेस्ट का उद्देश्य है श्री राहुल गांधी जी की आत्मा को झकझोरना, क्योंकि मौन एकदम मौन साधे हुए हैं वो अपने सिटिंग एमपी विमल अकोजम के सेक्सुअल मिसकंडक्ट पे. आप भी जानते हैं कि 9 अक्टूबर को जेएनयू की इंटरनल कमिटी ने विमल अकोजम के खिलाफ जो 11 छात्राओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करी थी उसमें कुछ सच्चाई पाई और इसीलिए उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त करा. आई वॉन्ट टू आश राहुल गांधी, वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस डेफिनेट साइलेंस? आई वॉन्ट टू आश द कांग्रेस पार्टी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये क्या केवल उनके हाथ जब महिला पुलिस कर्मियों पर उठते क्या केवल उसके लिए? उन्होंने अभी तक किसी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन विमल अकोजम के खिलाफ क्यों नहीं लिया? एक तरफ तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं, राहुल गांधी जी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी अवरोध डालते हैं और दूसरी तरफ एक अलग सेक्सुअल प्रेडेटर को लोकसभा में स्थान देते हैं. थैंक यू.
3: आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी जो महिला मोर्चा है, और सिर्फ महिला मोर्चा नहीं, जो देश की बेटियां हैं, आज लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी जी से सवाल पूछ रही है कि जो आपके एक सांसद के द्वारा जेएनयू में 11 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया और ये साबित हुआ, जेएनयू ने उन्हें बर्खास्त किया, आखिर आप आंख में पट्टी मुंह में पट्टी बांध के आप क्यों बैठे हो? आप जवाब कब दोगे? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियों ने तो कंप्लेन किया, आप क्या कर रही हैं? आप अपने पार्टी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई कब करोगे और इस मुद्दे पर आपका मुंह कब खुलेगा? ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से हम लोग पूछना चाहते हैं. देश की बेटियां पूछ रही है कि ये जो आपका नारा है ये दिखावा है, आज आपको बेटी के प्रति कोई दर्द नहीं, आप एक बेटी हो प्रियंका जी. आप सोनिया गांधी जी से पूछना चाहेंगे, आप भी एक माँ हो, एक बहन हो, बेटी हो, आखिर इन बेटियों का कष्ट, इन बेटियों का दर्द कौन सुनेगा?
4: राधिका खेड़ा इज हियर विद मी. राधिका, द कांग्रेस पार्टी इज होस्टिंग अ होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस राइट नाउ. व्हाट इज इट दैट यू आर डिमांडिंग फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी?
5: The Congress party may be holding a press conference, but the whole world knows that Rahul Gandhi will not utter a word against his Manipur Lok Sabha Sansad. If he had little bit of shame, he's been smashing patriarchy, but what needs to be smashed is Rahul Gandhi's soch, because he has clearly, and his sister, they are lying down on the road, they are creating a ruckus, but they are not removing that man from the party and not taking any action. You cannot have two standards when it comes to women empowerment, and I am a living example of what how women are treated in the Congress party. So what is happening is not something new, but Rahul Gandhi has to speak on this and has to take action. Let's see, it's a challenge to him. Press conference karo and throw that ban out.
0: All right, so the BJP protest there against the Congress. With that, time for a break. On the other side, we'll tell you about the horrific

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्गन मसाला।
3: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: Constitution Club. They got down at Barakamba Road and now they are moving towards the Supreme Court. They are also holding placards in their hands. A lot of sloganeering is happening over here. But also remember, Raisha, that today they were...
1: All right. We'll get in touch with our reporters on ground. But for the time being, take a listen to what Rahul Gandhi and Shivraj Singh Chauhan have to say on the Delhi Chalo protest, which continues at this point of time.
2: ये शिव की बारात है. इसमें किसी को भी आना आ सकता है. कोई भी जीव आ सकता है. हम रोकेंगे नहीं. दूसरा भारत जोड़ो यात्रा. उसमें कोई राजा नहीं था. उसमें सब एक साथ चल रहे थे. उसमें हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे. वो तांडव था. वो शिव की बारात थी. उसमें कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. जानवर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, बंदर आ जाए, जो भी आना चाहे आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता.
3: कांग्रेस तो शिवजी की बारात है. ये राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात की बात कर रहे हैं. ये शिवजी की बारात नहीं है. अराजकता फैलाने वाले हुड़दंगियों की जमात है जो सड़कों पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है.
1: Meanwhile, the opposition's confrontation over alleged electoral irregularities has now reached the Supreme Court, with opposition all set to knock the door of the apex court. The CJI has declined to meet the opposition leader, saying that the court's doors are open to all and petitions will be heard as per law. The decision has drawn criticism from Congress, which questioned why the CJI was refusing to meet Rahul Gandhi, the LOP, and asked under whose instructions the meeting was denied. Well, Shiv Sena UBT also criticized the move, saying that the CJI's role is to safeguard the constitution and that the opposition wanted to raise concerns and protect democracy. The Bharatiya Janata Party, however, has defended the CJI. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis said that the CJI was not obliged to meet a protest march, urging the opposition to approach the court and pursue its grievances legally.
4: नहीं देखिए, मैंने उनका, मेरे को कल लेटर मिला था, मैंने उसका कल रात में ही जवाब दे दिया है. मैं लेटर उनका परसों का है, मुझे, मैं कल मैं बाहर था तो मुझे, मेरे पास उनका लेटर मुझे मिला था, तो मैंने उसका रात में उसका जवाब दे दिया है. मैंने कुछ रीजंस उसमें दिए हैं जिसके बेसिस पे मैंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है कि मैं मिल नहीं पाऊंगा. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस लेटर के कंटेंट्स आप उनसे पूछिए. मैंने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की. सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं. कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए. हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे.
2: Congress President and I wrote to the CJI expressing our grave concern about the murder of Indian democracy and election fairness. Honorable CJI has responded and instructed us to file a petition. तो ये confusion है जो शायद सरकार को समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है. कहा गया है कि CJI has said he will not meet opposition leaders. That is not relevant. This is relevant. Honorable CJI has responded and instructed us to file a petition. कि जो आपके issues हैं वो आप Supreme Court में file कीजिए, legal process शुरू कीजिए. आज India Block leaders और मैं Supreme Court जाएंगे, एक साथ हम ये petition file करेंगे.
5: कोर्ट तक हमारा मार्च निकलेगा, इंडिया अलायंस का, इंडिया ब्लॉक का. 4 बजे हम जाएंगे, मिलने की कोशिश करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को. उसने आप कहा है कि हम नहीं मिल सकते पॉलिटिकल लोगों को. हम इसलिए मिलना चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र जो है उनकी दिन दहाड़े हत्या हो रही है. लाखों होटल्स के नाम दिल्ली में और करोड़ों देश में गायब हो गए हैं. ईवीएम में घोटाला चल रहा है. नैनेश कुमार जैसा एक व्यक्ति जो कठपुतली बनकर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन में, उसको हटाने के लिए देश भर में आंदोलन चल रहा है। ये सब बातें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करना चाहते थे, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही जनता के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं तो हम कहां जाएंगे, लेकिन हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे।
1: And we have some big breaking news coming in. Sources telling NDTV that Rahul Gandhi's plea likely to be heard tomorrow. Sources telling that the CJI-led bench to hear Rahul Gandhi's plea, Rahul's plea to be processed today. I want to go across to Srishti Oja. Come on, Srishti. Rahul Gandhi's legal team filed two pleas. One, action against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, and second was the alleged police brutality which happened a few days ago, and we are now learning that this plea will be heard tomorrow. What more are you learning on this?
6: Well, yes, this is the information that we have received from our sources. Firstly, that the petition, as we broke exclusively on NDTV, Rahul Gandhi versus Election Commission of India, is clearly questioned the process in which the Election Commission of India has been functioning, and also the deletions, the mass deletions in the SIR process. Now, according to our sources, we have been told that the registry has been asked to process this petition today itself. Remember, earlier also we broke the story that CJI, in his response to Rahul Gandhi, had said that if they, we were told by the CJI's office, sources in the CJI's office, that if the petition is filed today, then the matter will be listed with the other batch of pleas, which are to be listed tomorrow before a bench led by, before CJI's bench tomorrow on a Tuesday. Now, this is the information that we are getting from our sources. We will know more with regard to whether the matter is listed or not once the list comes out. But yes, the registry has been asked to process the petition, which was filed by Rahul Gandhi's legal team at around 4:30. Remember, Rahul Gandhi, along with other opposition leaders, had decided to march to Supreme Court, go inside the Supreme Court and file the petition in person, file the petition himself. But since he couldn't make it in time, and the Supreme Court's registry usually closes at 4:30 p.m. and they didn't manage to get any extension, his legal team, right, the Congress legal team, had to file the petition on his behalf. The lead petitioner in this case is Rahul Gandhi. But yes, we'll have to wait for the final list to come to know whether or not the matter is listed tomorrow before the top court or not. Back to you.
1: Right, Srishti. And this, of course, at a time when the Congress leaders are at the Bhagwan Das Circle. We'll be tracking this story very closely with you. In other news, Jantar Mantar, meanwhile, is no longer a designated protest site in Delhi. Based on the recommendations of a Home Ministry committee, new venues have now been designated for demonstrations in Delhi. The notification designating Jantar Mantar as a venue for demonstrations has now been rescinded. Three new locations have now been finalized as designated sites for protest and sit-ins in the national capital. The three new protest venues are Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground in East Delhi. Meanwhile, opposition leaders have slammed government over this move and said that they are doing all this to crush the spirit of protesters. Kokra Janta Party has also reacted to this and called the move unacceptable and an assault of protesters' rights.
7: I said wherever Indians step out will become the protest site.
8: What is your reaction towards Jantar Mantar no longer being a protest site?
7: Everywhere, every inch of this city has become a protest site. People want to step out and protest.
9: Jantar Mantar लोगों का है, लोगों का जंतर मंतर, इट्स द पीपल्स जंतर मंतर। हम लोग बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारा जंतर मंतर हम लोगों से छीन लिया जाए। आपको पता है देश में कितना पहले प्रोटेस्ट हुआ करता था जंतर मंतर पे भी, और इंडिया गेट एक आइकॉनिक जगह था जहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे, लोगों के पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होते थे। तो अभी उन लोगों ने जंतर मंतर हम लोगों से छीन लिया, इसके बाद क्या पता वो और क्या क्या छीने, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस डाले। तो हम लोग ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं।
10: प्रोटेस्ट से क्यों डरते हैं ये? कल कोई कह देंगे कि हिमालय की चोटी पे जाके प्रोटेस्ट करो तो वहां जाके प्रोटेस्ट करने से थोड़ा ही होगा। और प्रोटेस्ट तो सेंट्रल पैलेस पे होता है। प्रोटेस्ट के लिए क्या मतलब है कि प्रोटेस्ट तो सेंट्रल पैलेस पे होता है। जंतर मंतर होती थी जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पर होता था। अब आप इसको बाहर भेज दो के बाहर से क्या मतलब है? ये उठा करके कहेंगे कि कल को हिमालय की चोटी के ऊपर ही सिर्फ प्रोटेस्ट साइट है तो हिमालय की चोटी पे चढ़ेंगे लोग क्या? नहीं नहीं, सेंट्रल दिल्ली पॉइंट होता था और सेंट्रल दिल्ली रहना चाहिए। डर क्यों? इतना प्रोटेस्ट से क्यों डर रहे हैं ये लोग?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
1: High rate, check the audio. High rate, check the audio.
0: Let's do it. Let's start.
2: Breaking story, we're jumping straight into it.
0: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
3: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
0: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling. For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
3: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
0: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
4: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
5: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
6: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
7: Marne ke bada kya hoga?
6: As a journalist, I can say you're not alone.
4: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood, weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Marisha Sehgal. What's that to me? How?
8: The show that sets the prime.
10: All right, welcome back, ladies and gentlemen. While the Congress protest from Bhagwan Das Road is gone, the Congress Seva Dal is here trying to collect the garbage which has been left behind, water bottles and other garbage. And I can see, B.V. Srinivas, one of their senior leaders, the man you'll always see with Rahul Gandhi, leading this effort. B.V., what are you guys doing here?
11: जो सेवा दल का काम है सेवा करने का पानी तमाम चीज़ों ने सेवा किया था इतने कचरा भर गया है तो इसको क्लीन करने का भी हमारा ही काम है सेवा दल का सारे कार्यकर्ता अभी उसी को ही हर बार जब भी होता है ऐसे इस तरीके का कार्यक्रम वहाँ थोड़ा कचरा वगैरह रहता है उसको क्लीन करने का हमारा
10: आई सॉ अ ट्वीट मैंने आपका एक ट्वीट देखा था इसमें आप बोल रहे थे कि कल वो लोग जो पिटाई कर रहे थे लोगों की जो प्रोटेस्टर्स आ रहे थे आपने आज उन्हें बताया कि सेवा दल यहाँ पर होगा तो वो क्या बीवी अपने स्माइल करके थ्रेट दे रहे थे कि आज आ जाओ हम देख लेंगे
11: देखिए सब याद रखा जाएगा जो किस तरीके से इन लोग ने जो रवैया है जो व्यवहार किया है ये बिल्कुल ही सरकार पूरी डरी हुआ है जो इस तरीके से कोई आज तक आज़ाद भारत में पहली बार इस आप अक्टूबर 2 तारीख महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती दिन महात्मा गांधी जी का पहचान क्या है हाँ जो सत्याग्रह करने तक लोगों को पूरा बैरिगेट से चावनी बना के छोड़ दिया था ये सरकार कहीं ना कहीं टोटली कन्फ्यूज्ड है ज्ञानेश कुमार को जाना होगा आज के कार्यक्रम में राहुल गांधी जी ने एक कॉल दिया था कल एक वीडियो बना दिया था कोई किसी को भी ना बोला है आना है अपने आप घर से नॉन पॉलिटिकल पीपल आल्सो आप देखा होगा आज पूरा इसमें हिस्सा लिया इस देश का संविधान को बचाने के
10: लिए थैंक यू सो मच कैन आई गिव यू माय बॉटल एज वेल थैंक यू ऑल राइट दैट्स बीवी श्रीनिवास लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी हु इज हियर फॉर द क्लीन अप देयर राहुल गांधी हैज जस्ट लेफ्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर फाइलिंग द पिटिशन इन साइड द सुप्रीम कोर्ट वी विल हैव टू वेट एंड सी वॉट हैपन्स एज फार एज दिस पिटिशन इज कंसर्न बट एट दिस मोमेंट वाइल द सेवा दल क्लीन्स हियर द कांग्रेस पार्टी इज होप that there would be a cleanup as far as the electoral process is concerned. That's all the time that we have in this edition. News and updates will continue here on NDTV. Thank you so much for being with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे,
3: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
5: देश का टायर जेके टायर।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

यकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: Rang rang rang rang rang rang rang rang रंग बना रहे
2: बोझे पेंट रंग बना रहे
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात
4: वाओ मामा क्या स्वाद है
5: अरे मेरे राजा

0: from inside the protests.
1: Actually asked Shri Rahul Gandhi about his deafening silence. क्या छात्रों की गूंज केवल एक राजनीतिक जुमला है? क्या इन 11 छात्राओं की गूंज आपके कानों तक नहीं पहुंची क्या? या छात्रों की गूंज केवल एक आवरण है आपकी चीप कॉमेडी के लिए? विमल अकोजन इज अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी. आई वांट टू आस्क श्री राहुल गांधी जी, व्हाई नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय हिम और द कांग्रेस पार्टी? वो मौन क्यों साधे हुए हैं? आज के प्रोटेस्ट का उद्देश्य है श्री राहुल गांधी जी की आत्मा को झकझोड़ना, क्योंकि एकदम मौन साधे हुए हैं वो अपने सिटिंग एमपी विमल अकोजम के सेक्सुअल मिसकंडक्ट पे. आप भी जानते हैं कि 9 अक्टूबर को जेएनयू की इंटरनल कमिटी ने विमल अकोजम के खिलाफ जो 11 छात्राओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करी थी उसमें कुछ सच्चाई पाई और इसीलिए उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त करा. I want to ask you, Rahul Gandhi, what is the reason behind this deafening silence? I want to ask the Congress party, लड़की वो लड़ सकती हूँ, ये क्या केवल उनके हाथ जब महिला पुलिस कर्मियों पे उठते क्या केवल उसके लिए? उन्होंने अभी तक किसी प्रकार का disciplinary action विमल अकोजम के खिलाफ क्यों नहीं लिया? एक तरफ तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं, राहुल गांधी जी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी अवरोध डालते हैं और दूसरी तरफ एक अलग सेक्सुअल प्रेडेटर को लोकसभा में स्थान देते हैं. थैंक यू.
2: And well, while there are protests and counter-protests that are happening, let's tell you a change that has happened today, our biggest change, in fact, in a long period of time, where Jantar Mantar, which was once upon a time a designated protest site, is no longer a protest site anymore. And this is based on the recommendations of a Home Ministry committee. New venues have now been designated for demonstrations in the national capital. The notification designating Jantar Mantar as a venue for demonstration has been declined. There are 3 new locations that have been finalized as designated sites for protest and sit-ins in the national capital. The 3 new protest venues are, number 1, the Ramlila Maidan, the Burari Ground and the CBD Ground in East Delhi. Meanwhile, the opposition leaders have slammed the government over this move and said that they are doing all of this to crush the spirit of the protesters. Kokra Janta Party has also jumped in and reacted to it and called the move an unacceptable one and an assault on protesters' rights.
3: I said wherever Indians step out will become the protest site.
4: What is the reaction towards Jantar Mantar no longer being a protest site?
3: Everywhere, every inch of this city has become a protest site. People want to step out and protest.
5: Jantar Mantar logo ka hai, logo ka Jantar Mantar. It's the people's Jantar Mantar. हम लोग बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारा जंतर मंतर हम लोगों से छीन लिया जाए. आपको पता है देश में कितना पहले प्रोटेस्ट हुआ करता था जंतर मंतर पे भी, और इंडिया गेट एक आइकॉनिक जगह था जहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे, लोगों के पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होते थे. तो अभी उन लोगों ने जंतर मंतर हम लोगों से छीन लिया, इसके बाद क्या पता वो और क्या क्या छीने, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस डालें. तो हम लोग ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे. नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं.
2: And we get you the story from Uttar Pradesh, where there was a high drama that was held at the Congress office, and this happened in Lucknow, where a clash between 2 factions of the party turned extremely violent. Congress workers were seen shoving and beating each other, with one worker even hurling a shoe at another. The clash broke out between the supporters of former Uttar Pradesh Congress chief Ajay Rai and the Congress leader Mamata Chaudhary. Ajay Rai and then Mamata Chaudhary were engaged in a verbal spat later. Congress leaders and Rajya Sabha MP like Pramod Tiwari were seen pleading with folded hands, urging Ajay Rai to calm down. Samajwadi Party condemned the incident, saying that the strict action should be taken against whosoever raised a shoe. The BJP, meanwhile, has taken potshot and said that the Congress needs to introspect, questioning how the party could manage its own affairs when it constantly raises allegations against constitutional institutions.
6: बड़ी पार्टी होती है, थोड़ी बहुत रहती है. person is